चालू नहीं होया एदे पिछे बड़ी कालना। आओ ए जानन वास्ते थोड़ा जा इतिहास नु देखिए कि किस तरह सिख राज दा ए पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें गुरु जिन्हां महापुरखां दी आत्मक अवस्था इस शिखर ते सी कि ओ धर्म अते देश दी रखिया लई अपना सरबंस वा

थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत रजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर रजौरी जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिआं लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नूं मार सुट्टिआ पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नूं तीर मारिआ हिरनी जिहड़ी सी मरी उहदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इन्हां छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी उहदे मन ते अजिहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया पहला सन्यासी बनिया उसका नां नारायण गिरी पै गया फिर बैरागी बनिया योग सिखिया ले फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया दखण

आश्रम बना के रहन लग पया। अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पया। इस गोदावरी के किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़ियां ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधो दास दे आश्रम पहुंचे ते माधो दास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधो दास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधो दास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधो दास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इथे ना बैठो। पर गुरु साहब ने कहा असा जिथे बहना सी बह गए हां क्योंकि गुरु दे कौतक गुरु जान गए। उधर चेले जंगल विच भजे गए। माधो दास बैरागी नू जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरुष आके बैठ गए। लाओ लश्कर भी नाल है। ओदे चेहरे अगे किसे दियां अखां नहीं हुंदियां। तां माधो दास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्हूं पलंग तों थले डेग देंगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हां पलंग नूं उल्टाण दी कोशिश कीती। पर माधो दास बैरागी पलंग नूं उल्टा ना सकिया। जद माधो दास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते, पलंग ना उल्टा सकिया तां समझ गया कि मेरे पलंग ते जिहड़ा बैठा है वह कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधो दास बैरागी अपने आसन तो उठिया और ए देखण वास्ते आश्रम वल तुर पिया।

अपने आश्रम विच पहुंचे हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पलंग ते बैठे हैं। चार चफेरे सिख योधे शस्त्रां नाल सजे खड़े हैं।

तू कौन है? ता माधुदास बैरागी चरना नु चुमदा होया कहन लगा, मैं तुहाडा बंदा गुरु जी, मैं तुहाडा बंदा, मैं तुहाडी बड़ी उड़ीक कीती, बड़ा ढूंढिया, बड़ा लभिया, अज तुसी मिले, मैनू शांति नसीब होई, मेरी मंजिल मैनू मिल गई। गुरु जी ने माधुदास नु उठा के अपने कोल बिठाया, प्यार नाल कहा, जानदे होए भी पुछदे ने तू बैरागी क्यों बने? तां माधुदास ने अपनी कहानी सुनाई, एक हिरनी दा मैं शिकार कीता, वो मरी, ओदे बच्चे भी तड़प तड़प

एक होर हिरनी भी है जिसनु कड़ी कड़ी शिकारी तीर मार देनी। ओ हिरनी है ए धरती साड़ी जन्म भूमि जिसनु जुल्मी अपने पैरों थले लताड़ दे पए ने जुल्म पै कर दे ने माधोदास बैरागी ने ए सुनिया होया सी।

माता सती ने उन्हां नूं कहा, शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारिआं नूं बुलाया है पर ना मैनूं बुलाया ना तुहानूं बुलाया, परंतु वह मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहनी। शिवजी भगवान ने कहा, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जान की इजाजत दी। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलों में पहुंचे।

शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया तां दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा तां उन्हां ने उस वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी।

आग्या मंगी तां भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर कीता। तां उसे वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वढ के यज्ञ दी अग्नि विच सुट दिता। हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग इउं नसण लग पए जिउं प्रचंड महातांडव नचदी होई परलव आ गई होवे। इसे तरह एक कथा शिव पुराण दी, शिवजी भगवान ने महापैरों नूं अपने तेज विचों जिवें पैदा किया, अपने अलेटा विचों

एक ऐसा शहर सी जिदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचया अपनी फौजां दे नाल और इस सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दिया निगाह नाल देखया, ओ नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया। इस सरहंद

मकान ढा दिते, शहर नूं ढा ढेरी कर दिता। वजीर खान ओ भी मारिया गया, उहदे वजीर अहलकार जरनैल सिपाही सब मारे गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद ते फतेह कीती, अते जिस वक्त सरहंद नूं फतेह कीता ओदी इट नाल इट वजा दिती, और फिर फतेह दा डंका वजा के ए नहीं कहा कि मैं जितया, हाथ जोड़े ते कहन लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप दी कृपा द्वारा।

0: मेरी। मेरे सतगुरु संत सिपाही दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, कलगीधर शहनशाह, बाजां वाली सरकार, शेरां दी कौम दी नींह रख रहे ने, खालसा पंथ दी नींह। ते मुखों वाक फरमाया, जिन्नी देर दुनिया कायम रहेगी ए कौम शेरां दी कौम सदाएगी, सिंह सदा चढ़दी कला च रहणगे। गुरु साहब ने कौमां मजहबां दा वितकरा खत्म कीता ते कहा, खालसा मेरा रूप होवेगा।
1: वेदां विच कहानियां

अगर तू परमेश्वर दा नाम जपेंगा ओदी ओट ओदा आसरा लवेंगा इना भगतां दी तरह ओ परमेश्वर तेरी भी रखिया करेगा तैनू ओ परमेश्वर हर सुख हर वड़ियाई अते अपने नाम दे नाल भी जोड़ेगा और अपने वर्गा बना लवेगा। इस शब्द दे विच अनेका महापुरुषां दा जिक्र नामदेव जी ने कीता पर आपां भगत अमरीक दे जीवन बारे विचार करांगे। भगत अमरीक एक बड़े ही चक्रवर्ती और प्रतापी राजे होए ने। राजे भी सन पर राजकुमारन दे नाल भगती भी कमाई जिदे सदका अज आपां उन्हां दे जीवन बारे विचार कर रहे हैं। नामदेव जी बयान करते ने अमरीक को दियो अभय पद। भगत अमरीक नो अभय पद की प्राप्ति हुई। जन्म मरण दे चक्कर तों रहित हो गए। राज पवीखन अदक करियो जिस तरह पवीखन नो श्री रामचंद्र ने रावण नु मार के लंका दा राज दिता। क्योंकि जेड़ा भी भगत हुंदा है उनु सुख परमेश्वर दिंदा है। इसे तरह जेड़ा अमरीक भगत है इन भी परमेश्वर ने बड़ी उच्ची पदवी दिती भगतां दी पदवी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच स्वईये महले तीजे के जिदे अमरीक भगत बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इस तरह जिक्र कीता है।

मध्य भारत उड़ीसा वाल सी। ए राजा अमरीक राज करता है पर राज भाग दे सुख अपने वास्ते नहीं समझता। राज भी कर रहे है पर नाल भगती भी। ए भी भगती तू दयाल होके विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अमरीक की रक्षा वास्ते हर वक्त इन्हां दे कोल रखिया होया सी कि जदों भी भगत ते कोई पीड़ पवे तां सुदर्शन चक्र नूं ए हुक्म सी तू अमरीक की रक्षा करनी। इस गल की गवाही भाई गुरदास जी भी भरते। राजे अमरीक ने वर्त रखे, पूजा पाठ कराया, यज्ञ कराया और दान पुन करने वास्ते बिंद्रावन पहुंचया। बिंद्रावन जिथे कृष्ण भगवान जी रिहा करदे सन, इस जगह आके 6 करोड़ गौवां राजे अमरीक ने दान कीतियां। 6 करोड़ गौवां दे नाल सोना चांदी अनेकां वस्तुआं होर भी दान कीतियां। धर्मी बड़ा सी, नेक बड़ा सी, दान पुन करके ए राजा अमरीक वापस अपने महलां नूं तुरिया। महलां विच आके वर्त तोड़ना सी। वापस आंदे आ रस्ते दे विच दुर्वासा रिक्की दा मेल होया। राजे ने दुर्वासा रिक्की नूं नमस्कार कीती पर दुर्वासा रिक्की क्रोधी बड़े सन। कहन लगे, राजन तू इस वेले कित्थों आ रहे? राजा अमरीक कहन लगे, मैं बिंद्रावन तो आ रहे हैं और महलां विच जाके वर्त तोड़ना है। मेरी इच्छा है आप जी महलां विच आके चरण पाओ, भोजन छको ता मैं वर्त तोड़ा। दुर्वासा रिक्की कहन लगे, ठीक है राजन, जदों तक मैं भोजन ना छका तू वर्त नहीं तोड़ना, मैं आवांगा जरूर। इस गल नूं भाई गुरदास जी ने अपनी वार दे विच इस तरह बयान किया है।

मोह व्रत है, अम्बरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा ऋषि आया, अम्बरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ हस उपारना ओठ नावन नदी सिधाया। दुर्भाषा ऋषि नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना व्रत तोड़ी। अमरीक कहन लगा सत बचत। ए दुर्भाषा ऋषि नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी का मालिक दुर्भाषा ऋषि, चाहिदा ता ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर व्रत तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापद हुण दुर्भाषा ऋषि नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहा, दुर्भाषा ऋषि नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ पानी पी लो। सारिया की सलाह से भगत अमरीक ने पानी पी के ते अपना व्रत तोड़िया। ते दुर्व्रत तोड़िया उधर दुर्भाषा ऋषि आ पहुंचे। भाई गुरदास जी

राजा अम्बरीक दे राजमहला विच आया, पिछे पिछे सुदर्शन चक्कर भी है। हुण दुर्वासा रिखती मन विच मान नहीं रहा, हाथ जोड़ के ते अम्बरीक भगत दे चरना ते डिग पिया और कहन लगा, राजन मैनू माफ कर दे, मेरी जान बचा। पर सात संगत भगत अम्बरीक ए नहीं सोचता कि एक मां ऋषि मेरे चरणा ते डिगा पिया, ओदे मन विच मान नहीं, उन्हें फिर भी हाथ जोड़े ने। कहन लगे दुर्वासा रिखी नूं, तुसी बड़े उच्चे हो, परमेश्वर की बंदगी कीती है, तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको, ये ठीक नहीं। दुर्वासा रिखी उठ के खड़े होए ने, पर हाले भी हाथ जोड़े ने, क्योंकि सुदर्शन चक्कर हाले पिछा नहीं छड़ रहा। भाई गुरदास जी बयान करते ने, आए पिया शरणागति माटी दा अमृत छुड़ाया, भगत वछल जय बिरद सदाया। जदू ए दुर्भाषा रिखी भगत अमरीक दी शरण विच आया, ता फिर अमरीक ने बेनती की थी, ऐ भगवान अपनी इस चक्कर नू वापस बुलाओ ते दुर्भाषा नू बख्श दो। अमरीक ने दुर्भाषा रिखी दी सुदर्शन चक्कर तो बंद खलास कराई, ता भाई गुरदास जी कहंदे ने, भगत वछल जय बिरद रखाया। ओ परमेश्वर भगत वछल है, वो अपनी बिरद ही रखिया करता है, भाव कि जेड़ा ओदा हो जावे।

किस तरह उन्हें भगत अमरीक की रक्षा की थी। नाव ने दे ठाकर देवी सुदामे त्रू अटल अजूना कर अमरीक की तरह सुदामे ते कृपा की थी। त्रू भगत ते कृपा की थी। भगत हेत मारियो हरनाकश भगत वास्ते नरसिंह का रूप बना के हरनाकश का अंत किया। नामा कहे भगत बस के सब अज हूं बल के द्वार करो। नामदेव जी कहते ने केसव परमेश्वर नु के है सोने केसा वाला परमेश्वर ये ओ जरा परमेश्वर है वो भगतां दे वास है। इस वास्ते ता अज तक वो बल राज दे द्वारे ते खलोता होया है। तो गुरु साहिब जी भी बाणी विच कहंदे ने भाई अमरीक ने सिमरन कीता राजा होण दे नाल राज भी कमाया ते सिमरन भी ते अभय पद नु प्राप्त हो गया। आओ भाई तुस भी सिमरन करो दुनिया दे काम कार करदियां अते अपने जीवन नु

देहरा मसीत सोई पूजा हो निवाज होई। देहरा और मसीत पूजा अते निवाज इन्हां नूं एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इन्हां विच फर्क समझदे ने उन्हां दे मनां विच ही नफरत रहिंदी है। सदियां तों हिंदू मुसलमान इस मसले ते लड़दे झगड़दे आए, फर्क समझ के। कुछ लोग कहंदे ने कि सिख धर्म वक्खवादी है, पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं, ये सिख धर्म का ही उपदेश है। धर्म के नाते लड़न वाले सुनो,

गंधर्व तुरक हिंदू नाम वक हैं, पहरावे भी वक है, देश भी वक है, और इन चीजों का असर इंसान से होता है। पर सतगुरु जी कहते हैं अगर आप मन विच विचार करिए तो सानू किसी विच फर्क नजर नहीं आवेगा।

साहब जी कहते ने चाहे कोई हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है संसार विच जितने भी इंसान हैं सारे पांच तत्वों तो बने।

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मुलाने आपस च पै लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे।

जिन्हां नूं समझ नहीं सी कि मंदिर विच भी रब है, मस्जिद विच भी रब है। ठाकुर द्वारे मंदिर नूं कहिंदे, ओ मंदिर ढा के मस्जिदां बनांदे रहे ने, पर जिहड़े सच्चे मुसलमान जिहड़े समझदे सन कि सारिआं विच खुदा है, ओ विरोध भी करदे रहे।

इतने पाप कि सच लभदा नहीं सी। राजे जुल्मी हो गए, वजीर पाप कमान लग पे, अपने भले वास्ते अपने फायदे वास्ते लोकां नूं लड़ाना, लोकां दा नाश कराना और आप खुश होना। भाई साहब जी कह रहे ने

इन्हों ने अपना की काम बना लिया, राज भाग मिल गया, लोगों नूं आपस विच लड़ाना और जद भी पता लगना किधर सोहनी औरत है उस नूं हथियाण वास्ते हजारां बंदियां नूं लड़ाई दे मैदान विच मरवा देना। राजियां दा, वजीरां दा, नवाबां दा एह काम रह गया औरतां वास्ते लड़ाई झगड़े हजारां लोकां दा खून वहा देना एक औरत वास्ते पापे दा वरतिया वरतारा इतना पाप हो गया रब दे घर नूं ढा के ते फिर कहना कि मैं धर्मी हो गया। नहीं, भाई साहब जी कह रहे ने कि देखो इन राजियां महाराजियां दा वजीरां दा

हो जाओ निवाजू ही। ए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रब दा घर हन, इन्हां दा अपमान करना ठीक नहीं, क्योंकि एक पासे आपां कहने आ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ए रब दा वाहिगुरु दा राम दा घर है, भगवान दा घर है, पर इंसान अज दा कहो जिहा हो गया है। एक पासे कहंदे ओ रब दा घर है, जद झगड़े आपस दे हों ते फिर इंसान जिहड़ा है ओ इस पासे तुर पैंदा है कि धार्मिक स्थान भी साड़न तों ओ गुरेज नहीं करदा। जिहड़े लोग धार्मिक स्थानां दा अपमान करदे हन कि ओ अपने धर्म दे नाल इंसाफ करदे हन कि ओ जिस रब दे नाल प्यार करदे हन अपने मन कोलो पुछन कि मेरे इस काम ते मेरा रब मेरा परमेश्वर खुश हो रहे है। अपने मन दे नाल विचार करो ते इस दा जवाब खुद मिल जाएगा।

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी ने दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

और दूसरे पासे ब्राह्मण नो उपदेश कीता, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे। जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे, असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिदे भी जिस पासे भी देखेगा, वो जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, तो फिर किहदे नाल झगड़ा ते किहदे नाल लड़ाई, किहदे झगड़े खत्म हो जाणगे। और गुरु घर दा उपदेश है, फिर ते इंसान इहो ही कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किहदे नाल लड़ा।

गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश होया, उस वेले का जिक्र है। एक मुसलमान फकीर पेखन शाह पटना साहब दर्शन वास्ते आया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज छोटी उम्र है, पेखन शाह पटना साहब जद पहुंचे है, उसने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए छोटी उम्र विच। पर मन विच एक सोच पूरी कि ए रबी नूर हिंदू मुसलमान विचों किस दा पक पूरदा है। इस मंतव लई उन्होंने दो मिठाई दियां कुजियां ते दो कुजियां विच एक विच दुध एक विच पानी लिया। मठियाई दियां कुजियां तो भाव उन्हां दा धर्म सी ते पानी वाले कुजे दा अर्थ उन्हां मुसलमान भरिया सी ते दुध वाले नूं हिंदू मिथिया सी। मुसलमान बंदश ते शरा नूं ही धर्म समझदा है अते पानी बंदश विच पै के ही काम सवारदा। हिंदू चिट्टे कर्मां ते जोर देंदा है अते चिट्टियाई दा चिन्ह दुध ही है। पटना पुज के उन्हां ने पहला दोवें मठियाई दियां कुजियां बालक गुरु अगे रखियां। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने दोवें छोटे छोटे कोमल हाथ दोनों कुजियां ते रख दिते। फिर जद पेखन शाह ने पानी ते दुध दे भरे हुए कुजे अगे कीते तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने छोटे छोटे चरणा दे नाल दोवें ही कुजे डोल दिते। सारे हैरान हो गए, पर पेखन शाह ने अगे वध के गुरु साहिबां दे चरण चुम लए और पेखन शाह ने फिर यह सारा भेद लोगों सामने खोलिया कि यह गुरु किस एक दा नहीं, यह धर्म तां कुजियां विचों कढ़न आया है। धर्म दी यह बदकिस्मती है कि उस नूं किसे ने मसीत ते मंदर तों बाहर नहीं कढ़िया। इस कलगी वाले ने हिंदू धर्म मुसलमान धर्म नालों सिर्फ धर्म ते चलन दी प्रेरणा दित्ती। सारी जिंदगी ही उन्हां दी मुहारनी यही रही। वो पहले विश्व आगू सन जिन्हां मंदर ते मसीत पूजा ते निवाज नूं इक करके जानन दा उपदेश दिता। अकाल उस्तत विच ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा ए प्रसिद्ध सवैया है जेड़ा आप जी सरवण कर रहे हो। देहुरा मसीत सोई पूजा हो निवाज हो ही। ए ठीक है कि सिख धर्म विच मूर्ति पूजा नहीं कीती जांदी और ना ही निवाज पढ़ी जांदी है, पर फिर भी देखो आम हुंदा है दो लड़दे होन ते तीसरा बंदा तमाशा देखदा है। पर गुरु नानक दा कार उपदेश दिंदा है कि भाई क्यों रब दे नां ते लड़दे हो, ठंडे जिगरे दे नाल ठंडे मन दे नाल विचार करो कि फर्क की है। एक ने पूजा करनी है, एक ने निवाज पढ़नी है, एक ने वाहिगुरु कहना है, ते फिर फर्क की है। ना वक्रे हन राह एक है, मंजिल एक है, फिर झगड़ा क्यों।

गुरु साहबानी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुल्म के खिलाफ लड़ाई सी। जुल्म करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुल्मिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज विच हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि ये इंसानियत के भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करने वाला और एक जुल्म नूं रोकण वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनूं फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उन्हां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई आपां भी महापुरुषां दे राह ते चलिए, और ये जिहड़ा उपदेश है इसनूं अपने दिल विच थां लईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म की किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं मन लवेगा।

इस धरती ते ऐसे मंत्र हन जो सप दी बिच्छू दी होर कई प्रकार दे जहरीले कीड़ियां दी जहर उतार लेंदे हन मंत्र, पर जिन्हां नू उस परमेश्वर दी प्राप्ति दी इच्छा है, जिन्हां नू बिरहों दा सप लड़ गया है, उन्हां नू बिना दर्शना तो होर कोई इलाज नहीं है। बिरहों पुयंगम मन वसै

अपने हाथ तो एक सुंदर कड़ा उतार के पंडित नूं दे दिता, भई ये मेरे वालों प्रसाद दे दी भगत जी नूं, नाले मेरे वालों नमस्कार भी करी, क्योंकि सारी प्रकृति महापुरखां दे चरणां ते नमस्कार करदी है। गंगा जमुना सुरस्ती गोदावरी ते करे तूर उद्दम साधु की ताई, गंगा जमुना सुरस्ती गोदावरी ते करे उद्दम तूर साधु की ताई, किल बिख मैल परे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई। जेड़े महापुरख होंदे हन ना भगत जन, ए तुरदे फिरदे तीर्थ होंदे हन,

भोजन करना। भगत जी चले गए, ब्राह्मण जदों खाना खान लगे ता हर एक ब्राह्मण दे नाल भगत रविदास बैठा। परमेश्वर ने ऐसी अनेक है फिर

निर्धन को पले निर्धन को पले निर्धन को पले निर्धन को पले हाय हाय निर्धन को पले गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवां वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाम है खालसा रहनी दा नाम है खालसा अमली जीवन दा नाम है खालसा गुणा दा नाम है उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह का आप जी ने चारे वीर बार सरवन कीता है केवल बोल के लंघ दे हां आज पंजवां निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैन पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लंघा दे भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू सत्संग जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लंघा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करने वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने वो भी निर्धन नू पालना है सत्संग आज पंजवां निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ए पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवां निर्धन नू पालन दी सेवा लैण